कितना सुंदर संदेश है, सुबह की पहली किरण में रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का उजाला अपना रास्ता बना ही लेता है। उसी तरह जीवन में निराशा, असफलता या कठिन समय हमेशा नहीं रहता, समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती है।

0: है सबको। नमस्ते।
1: और चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी कि अंधेरों से घबराकर सफर छोड़ा नहीं करते, उम्मीदों के दिए जलाकर रास्ते खोजा करते हैं। हर सुबह यही पैगाम लेकर आती है, जो बीत गया उसे भूलो, नई शुरुआत तुम्हें बुलाती है। जल्द मुलाकात होगी, आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन।

0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।

0: ACP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: സുവർണ മലരുകളിൽ അടുത്തതായി കേൾക്കാം പൂവുകൾക്ക് പുണ്യകാലം എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ചിത്രപാടിയൊരു ഗാനം. രചന ഊരൂട്ടമ്പലം ബാലകൃഷ്ണൻ, സംഗീതം മോഹൻ സിതാര.

0: 6 മെഗാഹെഡ്സിൽ എഫ് എം ബാൻഡിൽ ഇന്നത്തെ പ്രക്ഷേപണം സമാപിക്കുന്നു. ഇനി പുലർച്ചെ 5:48 വരെ എഫ് എം ഗോൾഡ് ഡൽഹി റിലേ. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है. श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है. आज लद्दाख में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा. कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी.
3: तो आइए स्वागत करते हैं अपने.
1: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं.
3: इस अशोक जी आपका स्वागत.
1: संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पेडो वर्नास की खरीद की जाएगी. नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबा रासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. G7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रूपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है. सरकार ने पहली नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है. दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पहली नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है. इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे. वही जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा.
4: इसका प्रमुख उद्देश्य है
1: सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता. न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है. निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR करने का निर्देश दिया है. इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं. नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में DCP नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हों जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो. उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है. नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है. उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है. श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Shagun Chopra with my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है शगुन।
0: यस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस सर्ज अराउंड 2%, सेंसेक्स जंप्स ओवर 1500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट नियरली 23,000 लेवल। Country's merchandise exports rise over 23% to $44.4 billion in September this year. And global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 2% का उछाल, सेंसेक्स में 1500 से ज्यादा अंकों की तेजी, निफ्टी 23,000 अंक के आसपास बंद हुआ। देश का उत्पाद निर्यात इस वर्ष सितंबर में 23% की बढ़त के साथ $44.4 अरब बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक यानी 2.11% उछलकर 74,316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक यानी 1.66% की तेजी के साथ 22,997 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार का प्रदर्शन आज मुख्य सूचकांकों के मुकाबले कमजोर रहा। मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.4% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% नीचे आ गया।
0: Benchmark domestic equity indices ended higher today. The Sensex surged 1,534 points or 2.11% to close at 74,316. The Nifty rose 375 points or 1.66% to settle at 22,997. The broader market at the National Stock Exchange underperformed the frontline indices. The Mid-Cap 100 Index dropped nearly 0.4% and the Small-Cap 100 Index shed 1.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 27 कंपनियों के शेयरों में आज तेजी दर्ज की। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा 4.6% ऊपर आया, आईसीआईसीआई बैंक 4.2% के लाभ में रहा और रिलायंस में 4% की बढ़त दर्ज हुई। इसके विपरीत बीईएल और ट्रेंट में 0.6% की गिरावट आई, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.1% से ज्यादा नीचे आ गया।
0: In the sectoral indices on the BSE, 15 out of 28 sectors ended in the positive note. Among the top gainers, top 10 banks climbed 2.3%, private banks advanced over 1.8%, and IT jumped 1.5%. In contrast, capital goods dropped over 2.4%, power slipped more 1.8% and PSU banks dipped 1.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,668 companies declined, 1,720 advanced and 203 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले आज 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एकेबी, आज के मार्केट की हम बात करें तो सेंसेक्स में हमने देखा लगभग 1,500 अंक से अधिक का उछाल आया, वह निफ्टी भी 23,000 के आसपास पहुंच करके बंद हुआ। कई दिनों बाद ये आंकड़े हमारी आंखों के सामने हमें नजर आ रहे हैं, तो इन तेजी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, घरेलू कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, या फिर इसे बाजार में एक मजबूत वापसी का संकेत माना जा सकता है?
2: देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बाजार में मजबूती आने का ये संकेत है। ये जो आज का जो उछाल आपने देखा है, इसको हमें बारीकी से देखना है। इस उछाल में

0: के पीछे आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि हालांकि ये एक लार्ज कैप स्टॉक सेंटर्ड रैली है, इसमें अगर आपने जैसे अभी पढ़ा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई है, तो ये रैली सिर्फ फोकस्ड है लार्ज कैप स्टॉक में, ये रैली सिर्फ फोकस्ड है आईटी सेक्टर में, ये रैली फोकस्ड है प्राइवेट सेक्टर बैंकों में। आपको मालूम होगा कि कल सरकार बहुत बढ़िया एक निर्णय लिया था कि आईडीबीआई बैंक का स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन होगा उसका, सो उसी का। एंड आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा एक जो Q2 जो रिजल्ट जो आ रहे हैं उसमें काफी काफी उछाल आया है, और उसी के कारण हम ये देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक में आपका जो बढ़त आज आपको हासिल हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बढ़ोतरी हमें पिछले कई महीनों में दिखी वो आज वो काफी गिरावट में आई। उसका कारण भी ये है, काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई आज क्योंकि उस लेवल में, और दूसरी बात यह है कि जो रुपया जो है और रुपए में थोड़ी मजबूती आई है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीशन से, उससे भी जो मार्केट में थोड़ी बहुत मजबूती आई है। पर अगर आप दिनों का संकेत है ये मैं नहीं मानूंगा, ये वॉलेटिलिटी जो मार्केट में है वो अभी भी चलती रहेगी, और ये एक रिकवरी फेज है, और रिकवरी फेज का कारण जैसे मैंने कहा आईटी सेक्टर और प्राइवेट बैंकिंग में और लार्ज कैप स्टॉक में जो एक रिकवरी और Q2 अर्निंग्स की जो एक मजबूती है वो दर्शाती है।
1: सर, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स दे फेस प्रेशर डिस्पाइट द रैली इन द मार्केट, so and I have two questions for you.
0: Sure.
1: Both of them I'll question right now only. So does this imply that investors are concentrating their capital only in select large cap companies, first one, and what signal should retail investors take from this particular divergence?
0: So I think what the investors are doing is they are pulling their money out of the small and the mid cap stocks, because the small and the mid-cap stocks had already appreciated to a level where profit booking was possible. Mm. So they are pulling their money out. And they are also reinvesting in the large-cap stocks and taking positions and keeping their powder dry, because we are entering into a major big IPO phase. And when you are entering into a major IPO phase, like the Jio, Reliance Jio IPO is going to hit the markets very soon. It will be one of the largest IPOs. So that IPO would mean that the domestic investors are gearing up for that position. So I think the mid-cap and the small-cap profit booking has led to the surplus, which is going into the large-cap, and the large-cap is being positioned as a preparatory step for investing in the new IPOs that are coming.
2: AKB, आज IT और banking shares ने market को काफी सहारा दिया, आपने भी IT shares का जिक्र किया है, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में काफी कमजोरी देखी जा रही, तो इन्हीं sectors में बाजार आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई ऐसा phase आपको लगता है कि आने वाले समय में बिकवाली जो व्यापक हो रही है उसमें कुछ कमी आएगी और सभी चीजों में आगे एक जैसा माहौल देखने को मिलेगा?
0: आपने एक बहुत सही प्रश्न किया है। मुझे लगता है कि जो आईटी सेक्टर की जो स्ट्रेंथ जो है बहुत क्वार्टर के बाद एआई की जो चपेट आईटी सेक्टर में आई थी उसको उसके ऊपर जो इंडियन आईटी सेक्टर की जो बायोन्सी जो रेजिलियंस जो है उसको दर्शा रहा है, और बहुत क्वार्टर के बाद जो Q2 अर्निंग्स जो आ रही हैं सब आईटी कंपनीज की Q2 अर्निंग्स में बहुत बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, और उसी के लिए मैं समझता हूं कि आईटी सेक्टर पड़ेगा और किस तरह से हम आगे आईटी सेक्टर को देखेंगे को बड़ा एक।
1: So, Mr. Bhattacharya, PSU bank performance, I mean, what's your opinion about PSU bank performances nowadays?
0: What's well, I think what's happening is that the PSU banks have done very well since the prompt credit reaction plan

0: was put in place by the Reserve Bank of India in 2017, over the next 3-4 years, the PSU banks have done very well in reducing their gross non-performing assets. Even their net non-performing assets have come to a very, very comfortable level. And IDBI Bank, which is also considered a public sector bank, has reached a point where it could get a reasonable premium on the prevailing market price to be sold to a foreign investor. So I think public sector banks have done well. They are seeing credit visibility. The interest margin, the net income interest margin is still very strong as comparable with the private sector banks. So I think public sector banks are doing reasonably well.
1: Now shifting our focus to Mahindra result. Tech Mahindra today reported its financial results for the second quarter of the current financial year. The company's consolidated revenue increased by 15.6% on an annual basis to 16,180 crore rupees. The firm's net profit rose by nearly 33% to 1,585 crore rupees year over year. The board also approved an interim dividend of 15 rupees per share.
2: चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 14 अक्टूबर तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 13.21% बढ़कर 13,37,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आयकर विभाग द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार रिफंड में अधिक तेजी देखी गई। पिछले साल के 2,13,000 करोड़ रुपए से 24.22% बढ़कर ये 2,65,000 करोड़ रुपए हुआ। इस अवधि के दौरान प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी संग्रह 51% से अधिक का उछाल आया और ये 46,840 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एके में जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं मौजूदा व्यवस्था में, ऐसा आपको लगता है कि तमाम चीजें बदल रही, खासतौर पर जब हम कर संग्रह की बात करते हैं, सरकार नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रही, नए तरीके लेकर के आ रही, इससे काफी आंकड़ों में तेजी आई, बढ़ोतरी आई है और नई चीजें हमारे सामने निकल करके आ रही हैं।
0: देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो टैक्स कलेक्शंस जो केंद्रीय सरकार करती है, उस टैक्स कलेक्शन में जो एक बायोसी हमें देखने को मिल रही है वो काफी सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो अगर आप नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की जो वृद्धि दर जो है, ये ना कि सिर्फ कॉरपोरेशन टैक्स से हुई है बल्कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स से भी हुई है। इसका मतलब ये जो टैक्स पेइंग कम्युनिटी जो है वो जब टैक्स बेस जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और मैं यही मानता हूं कि अगर यही ट्रेंड अगले 6 महीने में बरकरार रहे तो सरकार की जो ग्रोथ रेट जो बजट में दिखने को आया था वो ग्रोथ रेट का लक्ष्य वो पूरा करके उसके आगे भी बढ़ सकते हैं। और जैसे हमने अभी भी कहा कि जो आईडीबीआई बैंक की जो विनिवेश से जो पैसा जो आएगा करीबन 32,000 करोड़, उससे भी काफी सरकार के खजाने को काफी फायदा मिलेगा। तो सरकार की जो वित्तीय जो घाटा का जो एक चैलेंज हर साल में आता है, मुझे लगता है कि इस साल हालांकि वैश्विक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, पर उसके बावजूद मैं समझता हूं कि इस बार जो केंद्रीय सरकार की जो पब्लिक फाइनेंस जो है, जो वित्तीय घाटा जो है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए कोई ज्यादा असुविधा नहीं होगी।
2: सितंबर में भारत में कुल श्रम बल भागीदारी और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि बेरोजगारी दर घटकर 5% रह गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार इनसे रोजगार संकेतकों में सुधार प्रदर्शित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी और रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में मासिक आधार पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। कुल श्रम बाल भागीदारी दर बढ़कर 55.5% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पिछले साल के मुकाबले मामूली गिरावट आई है। महिलाओं की भागीदारी में पिछले साल के मुकाबले सुधार हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अक्टूबर 2025 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 52.7% हुआ है। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात अक्टूबर 2025 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी में सुधार देखा गया। कुल बेरोजगारी दर पिछले साल सितंबर के मुकाबले 0.25% अंक घटकर 5% रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर गिरकर 4.2% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये

0: it's a very positive development, because only a few days ago, the impression was that the India-US trade deal may have reached a plateau and not further movement will take place. But what the minister just now said suggests that progress has been made, and India and US, the world's two large economies, will probably sign an agreement sooner than later.
1: AKP, अगर इंडिया के उत्पाद निर्यात की हम बात करें तो अमेरिका को लेकर के लगभग 51 अरब डॉलर अप्रैल से सितंबर के महीने में इस वर्ष बढ़ोतरी हम देख रहे हैं. एक तरफ हम समझौते की बात कर रहे हैं और निर्यात भी हमारा बढ़ रहा है. ये परिस्थितियां इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए अगर देखें कैसी नजर आती है आपको?
0: देखिये, इसका मतलब यही है कि जो विश्व की जो दो बड़ी बड़ी अर्थनीतियों में से भारत और यूएस हैं, और भारत की जो एक्सपोर्ट्स जो डिमांड यूएस से आती है भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए
1: जी,
0: वो ऐसे सेक्टर से आती है उसकी जो भारत की जो कॉम्पिटिटिवनेस जो है, जो प्रतिस्पर्धिता जो है, उसमें अभी तक कोई आंच पहुंची नहीं है. और आपको ये भी देखना होगा कि इस वक्त जो टैरिफ जो है अभी भी काफी वस्तुओं के ऊपर सिर्फ मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट का ही टैरिफ लगा हुआ है. ज्यादा टैरिफ अभी तक आया नहीं है और उसी का कारण यह है. और रुपया डिप्रिशिएट होने के बाद भारतीय जो जो जो निर्यात जो करते हैं उनके लिए एक बहुत एक पॉजिटिव साइन है.
2: Now we'll reflect on the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi. U.S. Ambassador to India Sergio Gore has described India as an unmatched market for American companies, and he was speaking at this Bloomberg New Economy Forum today in New Delhi. Mr. Gore highlighted the growing cooperation between the two countries across sectors. This included defense, IT and trade. Mr. Gore also underlined that India is well positioned for AI and technology development on its own soil, adding that partnerships with leading American companies would be mutually beneficial. He expressed confidence that India and the US would conclude a trade deal, saying the two sides had made substantial progress despite the complexity of the negotiations. Meanwhile, Ambassador Gore said that the US President Donald Trump is expected to make a decision within the next 10 days on sanctions provisions that could affect countries buying Russian oil and gas.
3: We have ongoing discussion on that. So the sanction options that Congress passed, they're not targeted at any individual country. It just happens that India does fall in one of those buckets, along with a lot of other countries. The goal is not to punish anyone. The goal is to try to bring an end to this war. I do think the president will make a determination on that over the next 10 days.
2: The National Payments Corporation of India, NPCI, has postponed the implementation of the merchant discount rate, MDR, on select person-to-merchant UPI transactions. MDR, which was earlier scheduled to come into effect from today, will now be implemented immediately after Diwali. NPCI has said that the implementation date will be notified separately.
1: एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट को मिली चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में जापान का निक्केई 4.9% नीचे आ गया. एकेबी, आज कई दिनों बाद हमने साउथ कोरिया के इंडेक्स में तेजी देखी है और ये तेजी भी चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में आई सुस्ती के चलते नजर आई. हालांकि एक तरफ आईटी सेक्टर थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस कर रहा है, लेकिन चिप सेक्टर नेगेटिव खबर लेकर गया, जबकि कुछ समय पहले तक लगभग दोनों एक ही वे में पैरेलल चलते थे.
0: देखिए, जो जो मार्केट में जो जो चिप सेक्टर की जो ट्रबल्स जो हैं, चैलेंजेस हैं, वो अभी कहीं कहीं नहीं है. और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो अभी भी जो थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल मामला है ये, और जो अगर आप बारीकी से देखें तो साउथ कोरिया कहें या जर्मनी कहें या यूनाइटेड किंगडम की जो स्टॉक मार्केट को देखें, तो वो उनके इकोनॉमी की जो जो जो दुर्बलता है उसको रिफ्लेक्ट दर्शाती हैं. हालांकि अगर आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत की जो ग्रोथ रेट की जो प्रोजेक्शन जो उन्होंने अपग्रेड किया है, उसी के लिए भी थोड़ा बहुत जो भारत में जो स्टॉक मार्केट ने थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, उसका भी कारण एक है. और इनकी जो एशियन और बाकी एशियन और यूरोपियन मार्केट में जो ग्रोथ की जो आउटलुक उतनी ज्यादा ब्राइट नहीं लग रही है, उसके लिए भी उनके स्टॉक मार्केट में ये धीमापन दिख रहा है.
1: ब्रिटेन के लिहाज से एक अच्छी खबर वहां पर ये देखने को मिली, जीडीपी मासिक आधार पर 0.1% की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे समय जब अमेरिका की स्थितियां

0: ब्रिटेन और यूरोप को लेकर काफी तेजी से बदल रही है, तो ब्रिटेन के लिए कितनी अच्छी खबर इसे माना जा सकता है?
1: इतने बहुत बहुत महीने बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, दुर्बलता जो थी, उसके बाद ये रिकवरी हुई है। मैं समझता हूँ कि वो उनकी एक इकोनॉमी के एक एक बाउंस बैक वो है, और इसमें हम ज्यादा कोई रीडिंग नहीं करना चाहिए।
2: And global crude oil prices, they eased today. Brent crude was trading 1.7% down at $104.21 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.2% down at $94.95 per barrel at the time when we were writing the report.
0: तो AKB crude oil पर आपके क्या opinion होंगे?
1: Crude oil में तो भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के दाम थोड़े घटते हैं तो हमारी जो जो हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है उसके लिए ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है। ये स्टेबिलिटी आएगी और हमारी ऑयल कंपनीज की जो जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है उसमें भी अच्छा एक प्रदर्शन कर सकती है। तो पर स्टॉक मार्केट की तरह क्रूड ऑयल प्राइस के भी वॉलेटाइल है, ये ऊपर नीचे जा रही हैं। इस वक्त इनका जो जो लेवल जो है वो अभी भी हमारे देश के लिए उतना अच्छा नहीं है, इसको और भी नीचे आना चाहिए अगर हमारी इकोनॉमी का पूरा फायदा उठा सके।
0: और श्रोताओं, भारतीय सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.1% गिरकर 1,45,942 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 2.6% बढ़कर 2,08,275 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। AKB इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
2: And now before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices surge around 2%, Sensex jumps over 1,500 points, Nifty settles at nearly 23,000 level. Country's merchandise exports rise over 23% to $44.4 billion in September this year. And global crude oil prices decline. And that's it in this particular edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से नगमे के साथ, जिसे आवाज दी है मुकेश ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी। इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगा

0: किलोवाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GZ-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉरपीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक AM बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GZ-7C उपग्रह के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। भारत और दक्षिण कोरिया पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बदलाव के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इनमें परमाणु ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। सियोल स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत गौरांगलाल दास ने वहां की नेशनल असेंबली की पर्यावरण, जलवायु, ऊर्जा और श्रम समिति के अध्यक्ष किम जंग हू से मुलाकात की। इसका उद्देश्य भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना, पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर तलाशना है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल शामिल है। आयोग ने कहा है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी है या हाल ही में पूरा हुआ है वहां कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। मौसम विभाग ने दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजना

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और साथ हूं मैं जयती। कभी कभी क्या होता है, हम सभी के साथ अक्सर ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि किसी अनजाने रास्ते से गुजरते हुए कोई जानी पहचानी खुशबू मिल जाती है। हम ठिठकते नहीं, बस हमारे कदम कुछ धीमे हो जाते हैं। लगता है जैसे कोई बीते दिनों का कोई प्यारा सा हिस्सा पास से गुजर गया हो या बिना बताए हमारे करीब चला आया हो। वो खुशबू किसी फूल की हो सकती है, किसी पुराने इत्र की, या घर में पकती किसी बहुत ही खुशबूदार मिठाई की जो हमारी पसंद की हो। उसके साथ लौट आता है, सिर्फ खुशबू नहीं लौटती, उसके साथ लौटता है किसी का हंसना, किसी का पास बैठना, किसी का छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना। और प्यार जो होता है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि प्यार हमेशा बहुत बड़ी बातों में नहीं मिलता। प्यार अक्सर बहुत छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं छुपा होता है, और वो किसी परिचित सी खुशबू में भी छुपा होता है, और हम उसे पहचान कर मन ही मन याद करके मुस्कुराने लग जाते हैं, या फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलने लग जाते हैं। और अगला गीत सुनते हैं फिल्म कॉलेज गर्ल से, फिर करेंगे आगे की बातें।

हम सभी के जीवन में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे किसी ने दिन भर की थकान के बीच चुपके से कोई प्यारी सी बात कह दी हो। उन नामों में न जाने कितनी मुलाकातें होती हैं, कितनी अधूरी बातें, कितने अनकहे वादे। कभी किसी भीड़ में अगर वही नाम सुनाई दे जाए तो पल भर को लगता है जैसे किसी ने हमें हौले से पुकारा हो। हम पलट कर देखते हैं और फिर खुद ब खुद मुस्कुरा देते हैं। कितना अजीब है ना कि कुछ लोग हमसे बहुत दूर होते हैं और फिर भी हमारे भीतर अपनी जगह कभी खाली नहीं होने देते। उनका नाम लेने भर से या सोचने भर से किसी अपनेपन की खुशबू आने लगती है और दिल में उस एक संबोधन जो घर बना लेता है, वो एक संबोधन, वो बार बार न जाने कितनी बार अपने आप के साथ जीने लग जाता है। हमें उसकी आदत हो जाती है कि हम जब दिन भर की थकान के बाद खाली बैठते हैं या घर लौटते हैं तो वो एक नाम जो हमारे भीतर हमारे साथ चलता रहता है, हम कुछ वक्त चुपचाप उस एक संबोधन के साथ गुजार लेते हैं। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है बॉयफ्रेंड।

दिल्ली में जब बारिश होती है ना, तो एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन बरबस याद आ जाती है, और वो लाइन है कि फिराक की बारिश मलाल का मौसम, फिराक की बारिश मलाल का मौसम, हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम। जी हाँ जनाब, ये जो बारिश में जब दिल्ली भीग जाती है तो शहर बड़ा कमाल का लगता है, और ऐसे में

कुछ रातें ऐसी होती हैं जो बाहर की बूंदों के साथ भीतर भी कुछ यादों को अपने साथ ले आती हैं। कोई पुरानी मुलाकात, कोई अधूरी बातचीत या फिर किसी का हंसते हुए विदा लेना। हम चाह कर भी हर याद को वापस नहीं बुलाते, लेकिन कुछ यादें अपना रास्ता खुद खोजते हुए हम तक पहुंच जाती हैं। फिर हम किसी पुराने संदेश को पढ़ते हैं, किसी तस्वीर पर नजर डालते हैं और बीते हुए दिनों की एक झलक से हम अंदर तक भीग जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर याद हमें उदास ही करे। कुछ यादें हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती हैं, कुछ यादें हमें बताने आती हैं कि हमारी जिंदगी में कभी कुछ कितना सुंदर, कितना मीठा घटा था। हर कहानी का साथ बने रहना जरूरी नहीं। कुछ लोगों का हमारी दुनिया में आना ही हमारी पुरानी दुनिया को पहले से अधिक खूबसूरत बना देता है। इसलिए इन यादों का होना भी बहुत जरूरी है। और अगला गीत, फिल्म का नाम है ब्लफ मास्टर, आवाज है शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

चांद ने फेर ली नजर अपनी, चांद ने फेर ली नजर अपनी, अब मेरे रतजगों का क्या होगा, अब मेरे रतजगों का क्या होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है मनमौजी।

रफ्ता दिले बेताब ठहर जाएगा, रफ्ता रफ्ता दिले बेताब ठहर जाएगा, रफ्ता रफ्ता तेरी नजरों का असर जाएगा। धूप और छांव मुसल्लम मगर अपने हद में, वक्त पाबंद नहीं है कि ठहर जाएगा। रोशनी में है चरागों के तले तारिकी, रोशनी में है चरागों के तले तारिकी।

धूप और छांव मुसल्लम मगर अपने हद में, वक्त पाबंद नहीं है कि ठहर जाएगा। रोशनी में है चरागों के तले तारिकी, रोशनी में है चरागों के तले तारिकी, हम समझते थे कि माहौल सवर जाएगा, रफ्ता रफ्ता दिले बेताब ठहर जाएगा, रफ्ता रफ्ता तेरी नजरों का असर जाएगा।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है 9211। आवाज है किशोर कुमार और आशा भोसले की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दान हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांव में विकसित

0: 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई है। DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती है कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing yesterday. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "The development of Ladakh remains a key priority for the centre."
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said, a centre of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence yesterday signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूं मैं जय।

सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने का आगाज करते हैं एक बहुत सुंदर गीत के साथ। फिल्म का नाम है गाइड और आवाज है मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयती। ये जो दिल्ली है ना, बारिश में भीगी हुई है और बारिश में भीगी हुई दिल्ली और ये बरसात, दोनों ही हमें बता रहे हैं कि मौसम आहिस्ता आहिस्ता करवट लेना शुरू कर चुका है। और मौसम जब करवट लेता है तो सबसे पहले किसी छोटे से एहसास में पता चलता है, जैसे सुबह की हवा थोड़ी ठंडी लगने लगती है और अलमारी में रखे गर्म कपड़ों की याद आने लगती है। चाय का स्वाद अदरक के साथ मिलकर कुछ और अच्छा लगने लगता है और शाम को घर लौटने की इच्छा भी बढ़ जाती है। सर्दियों का अपना एक अपनापन होता है, गर्म शॉल, मूंगफली, धूप में बैठने की छोटी सी खुशी और रसोई से आती गर्म खाने की महक। इस मौसम में रिश्ते जैसे भी हों, पास बैठना चाहते हैं, किसी के हाथ में चाय थमा देना, किसी के लिए स्वेटर निकाल कर रख देना या बस पूछ लेना, ठंड तो नहीं लग रही। कितना प्यारा होता है किसी की परवाह का इतनी साधारण सी छोटी छोटी बातों में दिखाई देना। और अगला गीत मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। बारिश के रंग में रंगी हुई दिल्ली, या यूं कहें कि भीगी हुई दिल्ली, बहुत सारी पुरानी बातों को रफ्ता रफ्ता करके करीब ला रही है और यादों को तरोताजा कर रही है। ठीक वैसे ही दिल्ली की जो शाम होती है ना, वो अपने भीतर बहुत सारी कहानियों को समेट कर आती है। सड़कें अपनी रफ्तार में, रोशनियां अपनी चमक में, और भीड़ अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ती रहती है। इन्हीं सबके बीच कभी कभी मन चाहता है कि कोई खास शख्स इसी शहर में होता, किसी दिन बिना योजना के मिल लेते, किसी नुक्कड़ पर चाय पीते और बेवजह की बातों में कुछ घंटे यूं ही बिता देते। फिर लौटते हुए कोई ये नहीं पूछता कि आज की जो मुलाकात हुई उसका हासिल क्या रहा, क्यों मिले, क्योंकि कुछ मुलाकातें किसी परिणाम के लिए नहीं होती, वो तो बस यूं ही हो जाती हैं जनाब। वे बस मन को खुश करने के लिए, कुछ यादों को ताजा करने के लिए होती हैं। दूरी का अपना ही एक गणित है, अपनी मजबूरियां हैं, मगर चाहत कभी एक सीधी सी बात कहती है, जो बहुत लंबी लंबी बातें, बहुत सारे फिलॉसफी, जीवन के बहुत सारे रूल रेगुलेशंस को चाहत नहीं मानती। चाहत तो बस हौले से मन के दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है, काश आज तुम यही होते, काश आज तुम यही होते।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब गीत सुहाने गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जीने की राह और आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

जब कभी बारिश आए ना, तो बारिश को ऐसे भी जी कर देखिएगा कि बारिश वाली शाम की बस में एक सीट खिड़की के पास मिल जाए तो सफर अपने आप खूबसूरत हो जाता है। शीशे पर पानी की लकीरें दौड़ती रहती हैं और बाहर दुकानों के बोर्ड धुंधले पड़ जाते हैं। एक बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़े बादलों को गिनने की कोशिश करती है और पीछे बैठे बुजुर्ग बार बार अपनी छतरी संभालते हैं। कोई छात्र फोन पर घर पहुंचने की खबर देता है तो कोई महिला अपने बैग में बची हुई मिठाई संभाल कर रखती है। अलग अलग मंजिलों के ये यात्री कुछ किलोमीटर तक एक ही कहानी का हिस्सा बने रहते हैं और फिर एक एक करके उतरते जाते हैं और बस अगली कहानी की ओर चल पड़ती है। और अगला गीत फिल्म आई मिलन की बेला से आवाज है मोहम्मद रफी की।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आप ये मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। तो छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालत से ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक AM बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। G-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च

निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुद्दुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई है। DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की है। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता रीमा नानावटी को शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए हिलेरी रोडम क्लिंटन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन सेवा की निदेशक रीमा नानावटी को यह पुरस्कार अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी में प्रदान किया। रीमा नानावटी ने भूकंप से प्रभावित ग्रामीण महिलाओं के जीवन और रोजगार को फिर से बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, कराईकल में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में पहला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अवतार।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आज हम पुरानी यादों को तरोताजा कर रहे हैं। एक किताब के बीच सूखा हुआ फूल मिलना किसी पुराने पत्र के मिलने जैसा है। कभी वह फूल ताजा रहा होगा, किसी ने बड़े जतन से उसे चुना होगा, और फिर किताब के पन्नों के बीच उसे सुरक्षित रख दिया होगा। वर्षों बाद रंग फीका पड़ चुका है, पंखुड़ियां नाजुक हो गई हैं, लेकिन उसे देखकर सवाल उठता है, किस अवसर पर दिया गया था यह फूल, किसके हाथ से आया था, कौन सा मौसम था। इन सवालों के जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन उस फूल ने अपना काम कर दिया। उसने साबित कर दिया कि कुछ पल बीत कर भी हमारे भीतर अपनी जगह बनाए रहते हैं और यादों को तरोताजा करने का काम करते रहते हैं। अगला गीत, फिल्म का नाम है जुर्म, आवाज है कुमार शानू और साधना सरगम की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, रात सुरमई, और आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है अनामिका और आवाज है लता मंगेशकर की।

एक ऐसा अध्याय जो हम सभी के जीवन में कभी न कभी जुड़ता ही है। जी हाँ, शहर में आने वाला जो व्यक्ति होता है, जब वो अपने गांव, अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर की तरफ अपने सपनों को पंख देने के लिए पहुंचता है, तो जब पहली बार अपना छोटा सा कमरा सजाता है तो उसमें सामान बहुत कम होता है पर उम्मीदें बहुत ज्यादा। एक मेज, दो कुर्सियां, कुछ किताबें और दीवार पर टंगा हुआ कैलेंडर। खिड़की के बाहर देखा तो अनजाना शहर और अंदर अपने भविष्य की योजनाएं। पहली रात नींद बहुत जल्दी नहीं आती, हर आवाज नहीं लगती है। फिर धीरे धीरे वही कमरा घर जैसा लगने लगता है। मेज पर चाय का कप अपनी जगह बना लेता है, कपड़ों के लिए कोना तय हो जाता है और दरवाजा खोलते ही अजनबी शहर थोड़ा सा अपना दिखाई देने लगता है। घर हमेशा तैयार नहीं मिलता, कभी कभी उसे

अपने हाथों से बनाया भी जाता है। और अगला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में, फिल्म का नाम है आशिकी।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ और एक प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के

0: 20 संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई है। डीसीपी नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की है। ई गवर्नेंस सुधारों पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें ई गवर्नेंस सुधारों, डिजिटल बदलाव, नवाचार और प्रभावी शासन व्यवस्था अपनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये सम्मेलन उत्तरदायी, पारदर्शी, कुशल और प्रौद्योगिकी आधारित शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ आज 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 18 और तीसरा मैच 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing yesterday. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, the development of Ladakh remains a key priority for the center.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said, a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence yesterday signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varuna's heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varuna's heavyweight torpedoes, worth over 1,500 crore rupees, was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defence manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other INDIA bloc leaders on a petition raising concerns over their march to the apex court in the national capital. The top court observed that nobody can browbeat the judiciary. Mr. Gandhi and other opposition leaders held a march to the Supreme Court and entered the court registry on the 12th of this month to file their petition amid protests demanding the resignation of the Chief Election Commissioner over alleged SIR irregularities. The Election Commission has directed 17 states and union territories to conduct a special summary revision SSR of electoral rolls with 1st of January next year as the qualifying date. These states and union territories are Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. Delhi police said that in view of the proposed protest at Connaught Place area of New Delhi today, prohibitory orders under Section 163 of Bharatiya Nagrik Suraksha

आधी रात के 3:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हमराही। और आज के इस शो में मैं रहूंगा पंकज आपके साथ। तो दो गानों के बाद में आपसे मिलता हूं, तो शुरुआत करते हैं बुलंदी मूवी के इस गाने के साथ और दो गानों के आप मजे लीजिए और फिर मैं आपसे मिलता हूं।

अमिताभ जी और किशोर दा की आवाज में कस्मे वादे मूवी का ये गाना आर डी बर्मन का संगीत और गुलशन बावरा के बोल थे। पूरे दिन के शोर शराबे के बाद ये सुकून भरी रात है, इनफैक्ट हल्की ठंडी रात है और कल तो बारिश भी हुई है दिल्ली में, तो उससे तो और भी मौसम ठंडा हो गया है। और अभी मैं जब ऑफिस में था तो वाकई मुझे ठंड लग रही थी, तो इसका मतलब ये है कि हाँ ऑफिशियली ठंड आ चुकी है। मैं हूँ पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर और शो का नाम है हमराही। रात के समय की खूबसूरती अलग होती है, उस पर पुराने ड्यूट्स गानों का मजा जो है वो चार चांद लगा देता है। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तो इन गानों को सुनिए और गानों की हसीन दुनिया में मेरे साथ

मूवी के नाम आखिरी इंसाफ, अमित कपूर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गाना था। और ये जो रात के 3:32 वाला जो टाइम है, ये वो पल होता है जब हमें वो इंसान याद आता है जो हमसे दूर होता है। और जिंदगी हमें ऐसे कई बार मोड़ पर खड़ा करती है जहां पसंदीदा शख्स को पाना जो है बड़ा मुश्किल सा लगता है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज, आपके साथ शो का नाम है हमराही। लेकिन उसे पाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए ताकि इस बात की ग्लानि ना रहे कि आपने कोशिश नहीं की। कोशिश करेंगे तो हो सकता है ऊपर वाला मेहरबान होकर उस शख्स को आपकी जिंदगी में भेज दे। ट्राई तो हमेशा करना ही चाहिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो टाइम से पहले अगर मिल जाए तो अच्छी बात है।

मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। और ये फीलिंग तभी आती है जब इंसान उस अपने पसंदीदा इंसान के जो है गले लगता है, और गले लगने के बाद ही वो गर्माहट महसूस होती है, वो प्यार, वो अपनापन महसूस होता है। पता है, अपने पसंद के इंसान से जब हम गले मिलते हैं और उसके देर तक गले जब लगे रहते हैं ना, वो एक अलग ही लेवल का सुकून होता है। और गले मिलने से दिल को बहुत अच्छा लगता है, और जिंदगी भी तभी अच्छी लगती है जब आपके साथ आपकी पसंद का साथी हो। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज, आपके साथ। शो का नाम हमराही है, और जितनी भी फिल्म हैं उनमें, ज्यादातर फिल्में जो हैं उनमें अपने पसंदीदा शख्स को पाने की ही जिद दिखाई देती है, और जब वो मिल जाते हैं फिर दोनों हीरो हीरोइन जो है वो गले मिलते हैं। तो और आपने वो मूवी भी देखी होगी जादू की झप्पी, जिसमें संजय दत्त हैं। तो मतलब गले मिलना वाकई एक बहुत कमाल की चीज़ है, तो जब भी मौका मिले तो हमें गले लगना चाहिए, और इससे प्यार बढ़ता है। खैर, इस गाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, और आप ऐसे सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।

मौसम बड़ा ठंडा है। अच्छा जी, हाँ अच्छा जी भाई, वाकई सही में बाहर निकल के अगर आप देखेंगे तो ठंडा तो है। अच्छा वैसे ये ना त्योहारों के दिन चल रहे हैं, तो ऐसे में बहुत से लोग ना भगवान से अपना मन साथी हमराही पाने की प्रार्थना करते हैं। और वैसे भी किसी इंसान को पाना कितना मुश्किल होता है ना, खासकर जिस इंसान से आप बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ सपने देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी उसके साथ ऐसी बनेगी आगे। और जब वो इंसान जो है, जब थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं घूमता रहे, मतलब वो लाइन पर ना आए, कह सकते हैं कि जब वो काबू में ना आए, तब और ऐसा लगता है कि पता नहीं इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी की सेटिंग बैठेगी या नहीं, ये मिलेगा या नहीं, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और बाकी बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको उनका पसंदीदा लाइफ पार्टनर मिल जाता है। मैं पंकज अगले घंटे सुबह 4:10 पर आपसे दोबारा मिलूंगा नेक्स्ट शो अरुणिमा में। अभी इस गाने का आप मजा लीजिए और सुबह 4 आप सुनेंगे हिंदी और इंग्लिश में समाचार। अभी के लिए ये वाला गाना और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं पंकज आपके साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक और केरलम के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के जहाज INS समर्थक को बेड़े में शामिल करने के समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति केरलम के कोझिकोड में नवरात्रि सर्गोत्सवम 2026 का उद्घाटन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई है। DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की है। ई गवर्नेंस सुधारों पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें ई गवर्नेंस सुधारों, डिजिटल बदलाव

बदलाव, नवाचार और प्रभावी शासन व्यवस्था अपनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ आज 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 18 और तीसरा मैच 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। T20 श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जाएंगे। मौसम विभाग ने दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल तक आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरला और माहे में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और अब आप सुनेंगे ये वाला शो जिसका नाम है अरुणिमा। इस शो को आप हर रोज सुनते हैं तो हर रोज की तरह ही इस शो को जो है आप सुनेंगे, लेकिन आज इस शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, तो गानों का ऐसी मजा लीजिए और शुरुआत करते हैं अभी तो जी लें फिल्म के इस गाने के साथ।

है। संसार में रहकर किस किस से बच बच कर जिंदगी भर भागते रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज, आपके साथ शो का नाम है अरुणिमा। तो इन दो गीतों के बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूं, और शुक्रवार की ये सुबह है और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। नवरात्रि के दिनों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह से हमारे ऊपर जो है माता रानी की कृपा बनी रहे और देश में सुख शांति समृद्धि खूब हो। अभी आप सुनिए रजिया सुल्तान मूवी का बहुत ही प्यारा सा गाना लता जी की आवाज में, और इस गाने दो गानों के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ।

सुबह के 4:30 और 30 सेकंड हुए हैं और इस समय जो है माहौल मतलब मौसम जो है एकदम अंधेरा अंधेरा सा है और ऐसे टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट मूवी के गाने सुनना वो तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। सीआईडी फिल्म का ये गाना था, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में, ओपी नैयर का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के लिरिक्स थे। सोचिए दुनिया से प्यार और भरोसा अगर खत्म हो जाए तो कैसे हालत बनेंगे, मतलब बिना प्यार के तो सर्वाइव करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है और दिलों में निस्वार्थ प्रेम को जो है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है और सिर्फ होना ही नहीं उसको बांटना भी जरूरी है। और कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं कि हम तो भाई सामने वाले को बहुत प्यार दे रहे हैं लेकिन दूसरा हमें प्यार नहीं दे रहा। आई नो कि हमें भी प्यार की जरूरत होती है, हम भी इंसान हैं, लेकिन इसी में ही निस्वार्थ, इसी चीज को निस्वार्थ कहते हैं कि बस आप प्रेम दीजिए और फिर सामने वाला दे ना दे वो अलग बात है। हमारा काम है कि भाई हम इंसानियत का परिचय दें। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज, आपके साथ शो का नाम है अरुणिमा और यही प्यार जो है इंसान को आगे जाके जो है उसको खिलने पर जो है वो तैयार करता है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि जब आपको प्यार मिलता है तो इंसान ग्लो और ग्रो दोनों करता है।

0: फिफ्टी, कुछ तेरे दिल में फिफ्टी, कुछ मेरे दिल में फिफ्टी, जमाना है पूरा।
1: 1956 की मूवी सीआईडी का ये गाना था और ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इस समय हमारी दिल्ली जो है शहर में पूरी एकदम धूम मची हुई है त्योहार की और मंदिरों की सजावट देखने लायक है। और इन दिनों से पता है हम अपने मन को पवित्र करने के संकल्प जरूर लें कि हमारे मन में कभी भी किसी के लिए कोई बुरे भाव ना आए। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज, आपके साथ शो का नाम है अरुणिमा। मन अगर बिगड़ा तो कर्म में बदल कर वो सब खराब कर देता है और जब हमारे मन में दूसरों के लिए प्यार पैदा होता है, उनके लिए आदर सम्मान और जब हम उनकी सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं तो सच में एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है और हमारे कर्म अच्छे बनते हैं और जब कर्म अच्छे बन जाएंगे तो फिर उसके परिणाम हमेशा अच्छे ही आएंगे।

आप गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे हो और सामने ठंडी हवा एकदम गाड़ी के अंदर आ रही हो और ये वाला गाना चल रहा हो और हल्की हल्की बारिश हो रही हो, तो बहुत ही मजा आता है। और इस टाइम तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी के जो गाने हैं वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आज शुक्रवार यानी जो है एक हफ्ते का पांचवा दिन है, और यानी कल को दो दिन का वीकेंड। लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि भाई जिंदगी एक है और वो भी अनसर्टन है, अनिश्चित है। खुशी और तन मन के सुख के लिए ना वीकेंड पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर पल का मजा लेना चाहिए। जो भी सामने खुशी का मौका आए उसे फटाफट लपक कर जिंदगी को जी लेना चाहिए। अब मैं पंकज अगले घंटे आपसे भोर सुहानी शो में मिलूंगा। अभी इन गानों का मजा लीजिए और उसके बाद सुबह 5 बजे से सुबह 5:10 तक आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में न्यूज, और उसके बाद फिर भोर सुहानी शो शुरू होगा। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड सुनते रहिए।

चाहिए। अब मैं पंकज अगले घंटे आपसे भोर सुहानी शो में मिलूंगा। अभी इन गानों का मजा लीजिए और उसके बाद सुबह 5 बजे से सुबह 5:10 तक आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में न्यूज, और उसके बाद फिर भोर सुहानी शो शुरू होगा। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड सुनते रहिए। मैं हूँ पंकज आपके साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सकलैन अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण भी किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉरपीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक और केरलम के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के जहाज INS समर्थक को बेड़े में शामिल करने के समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति केरलम के कोझिकोड में नवरात्रि सर्गोत्सवम 2026 का उद्घाटन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई हैं। DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। ई गवर्नेंस सुधारों पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देशभर के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें ई गवर्नेंस सुधारों, डिजिटल बदलाव, नवाचार और प्रभावी शासन व्यवस्था पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ आज 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेला।

सुबह के 5:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं पंकज आपके साथ। अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूं। लता जी की आवाज में बेमिसाल मूवी का ये गाना, इससे शुरुआत करते हैं।

मासूम फिल्म से भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना था। आर डी बर्मन का म्यूजिक और गुलजार के बोल थे। 16 अक्टूबर फ्राइडे मॉर्निंग नवरात्रि के ये शुभ दिनों की आपको ढेरों बधाइयां। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज, आपके साथ शो का नाम है भोर सुहानी। और अभी नवरात्र की वजह से कई लोगों ने जो है अभी दिल्ली वाला स्पाइसी खाना जो है वो बंद किया हुआ है, लेकिन खाने के शौकीन तो हम दिल्ली वाले हैं ही, और व्रत की थाली में भी जो बढ़िया पकवान हम ऑर्डर कर देते हैं। तो बाकी तो ये सब हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन हाँ ये जो है दिन बहुत अच्छे हैं, बड़े पवित्र दिन हैं, और इन दिनों का जो है खूब मजा लेना चाहिए और मन को भी बहुत साफ रखना चाहिए। अभी के लिए आपके मन को खुश करने के लिए ये दो गाने मैं प्ले करने वाला हूँ, मतलब एक तो कर ही दिया है, तो आप इन दो गानों का मजा लीजिए, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ।